ये लगी लॉक तो बुत्ता उठी सबसे हो गया ना फिर निलाव चाव करने उन्होंने नवंग में पी वाले पैनिक पता सिर लग गया ना अब लोगों ने तमानी की वाले में अम्मा के चंग में नित संग ना तम्मा लो तलो तुम ने सुलाओ में गिट्सी तो सायक समिन